0: Vinyl warmth meets digital cool.
1: Yeah, we cool.
0: You're listening to Turntable Poets on FM 89.
2: आप इन दोनों की शादी करें ताकि आपको एक शानदार पार्टी दी जाए।
3: श्योर।
4: लेकिन सर एक ही पार्टी से काम नहीं चलेगा। शादियां दो तो पार्टियां भी तो होनी चाहिए।
3: Oh yes, of course. Why not? Why not? Come on, let's go.
4: Hello, big man. Hello, big man.
3: अपनी जिंदगी.
4: Hello, big man.
3: अपनी जिंदगी.